मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग।

मेरा। मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दिया जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। जे साडे वालों गिणिया जावे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वाल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखा ने ना, अखा विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके ना, मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके ना, मेरे को जबान है जिसे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सका। बल्कि मेरी ता सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे ने। कुल हीन कह लो, गुण हीन कह लो, ते जिदी कुल भी कोई ना होवे, जिदा गुण भी कोई ना होवे, ओदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते

0: काल मूर्त अजूनी से भंगो प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असी भी इन्हें दर्शन करने आया कितने मिलेंगे?
2: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
2: हाँ बेटी, गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे, उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
2: हाँ, तन गुरु अमरदास, तन गुरु रामदास,
1: तन गुरु अमरदास,
3: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी था है। तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान में लानी हूँ। नाले पता कर लांगे तुम पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
3: छेती आना। तन गुरु रामदास।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता देता पर श्वेत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: बस तो जाए सरोवर।

0: तू तान्य पुत्र ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास।
2: बेटी,
1: पिताजी
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।

0: Papa, peut-être?
1: Ma petite. Ma belle sang. Tu sais, tu es par ma tête, tu es à l'échelas. Tu sais, tu es à l'échelas. Tu es à l'échelas. Tu es
2: à l'échelas.
1: Tu es à l'échelas. Tu es à l'échelas. Tu es à l'échelas. Tu es à l'échelas.
0: रजनी
3: ठीक कहती है राजा दूनी चंद ऐसी सारी तीर्थ यात्रा के तपस्या का फल समुचे तौर पर ऐसे स्थान से मिले ऐ धरती बड़ी पावन है एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है ते ऐ छपड़ी अमृत का कुंड है
4: अमृत से इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल तन कंचन करते हैं की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

साहब के अंदर यह है गुरु ग्रंथ साहब की पावन पीठ, इस लगभग 30 पत्तों की बाणी के नाल सतगुरु साहबान की पवित्र बाणी भी शामिल है। हर मत, हर सिरके, हर धर्म के मर्यादा नु मनन वाले पीरां फकीरां ते संतां दी बाणी दा यह महान संग्रह सिख धर्म के एक सांझे मनुखी धर्म होने का प्रतीक है, जो सारे संसार नु ज्ञान का चानन बख्शदा है। कोई आवे जो उन्होंने इस मुसीबत तो मुक्त करावे, जुल्मत पाप के अंधेरे चो किरण चमकी। संमत 1526 सन 1469 ईस्वी समय पंजाब के जिला शेखुपुरा के तलवंडी पिंड विखे श्री गुरु नानक देव जी ने अवतार धारिया। जगत जन्मदे गुरु जी ने सुख शांति का पैगाम देने च गुजारिया। संसार अंदर रहिंदे गृहस्थी विच भक्ति का मार्ग दर्शाया।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्ता को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा, अचरज

तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत ना पाया। जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया सुबह मच प्याल जी। हवारी हवार ने कुर्बान तेरे नाम नु, तू संसार पाया सिरे सिर धंधे लाया।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे न किसे न इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी, ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ये कीता, चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ये उपदेश कीता, ये जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं, सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है, आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया, देवी देवतिया अपछड़ा खुशी दे गीत गाए, आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ये शब्द गा के रसना पवित्र करें।

जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो। पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोए। दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न को।

आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास। जग जीवन

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

मंगर माहे सोहंदियां हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया।

प्रभु अपना नानक तिस कुर्बान, माग सुचे से कांडिये जिन पूरा गुर मेरवान। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावी।

गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की थी, जिथे सारिया भगतान सन्माने उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक के चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु, ये संसार एक समुंदर है, ये समुंदर विच कहते जदों देवत्या ने समुंदर नू रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहते ने एक समुंदर तो वह है जिदे विच पानी का कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ये संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर की बात करते ने, कहते ने हे मालिक,

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देव

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नो तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है, इतने साड़ी विच अवगुण हैं। कृपा कर इन अवगुणा

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण चलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने, ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सके हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बालक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपी।

गुरु अर्जन देव पातशाह फैसला देंदे हन कि जेड़ा ऐसा कर्म करेगा सेवा सिमरन परपकारी जीवन बनावेगा उदा मुख एथे भी उजला है ते दरगाह विच भी उजला है। कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा जित मुख सदा सलाहिए पागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले सच्चे ते दरबार। ओ सच्चे दरबार विच भी मुख उजला ते संसार विच भी मुख उजला हो जांदा जो उसका नाम जपदे हन जो ईश्वर नू त्यामना करदे हन। कर हर कर्म हजूर दा बचन है सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान अठ सठ तीरथ सगल पुन जी दया परवान जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। इसलिए गुरसिख दा जीवन सेवा सिमरन परपकारी जीवन होवे ते फिर एथे भी मुख उजला ते दरगाह विच भी उजला है।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

बात भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहू देव बानी कहू सारधा भवानी कऊ मंगला मेड़ानी कऊ श्याम कहू सेत हो।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

सतगुरु कहने जे मालिक नू मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। एदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नू पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते टाइया टाइया तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नू किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसदे ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नू मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।